0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: ओसम
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: ओसम

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने। जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: Awesome.
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है
2: Awesome.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: मैं हूं अनिल कपूर।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

कभी खुद के कंधे पर हाथ रख कर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: दिस इज अमायरा दस्तूर ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. Radio Olive, your happiness frequency. Geo

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है, सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मसराती।
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
3: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरो की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें, धरोहर मिस मत करना।
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: आई रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
3: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Akshay Kumar.
6: Hi, this is Anushka Sharma.
7: And I'm Ashok Vasi.
8: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Here we go.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो
1: बिंदास ओसम रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ओसम.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय रेडियो ऑलिव, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
2: शाहरुख खान, आई एम नंबर 1।
3: रेडियो ऑलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
3: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
4: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
3: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

सुनी जानी चाहिए। द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर। 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026। कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड कॉन्कर।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Hello,
1: I'm
2: Neena Gupta. Neena
3: Gupta.
4: Radio.
2: Sun rahe hain Radio Olive 106.3.
5: Olive Sunur.

देखिए दौर ऐसा चल रहा है ना जहाँ पर हमें हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रखनी चाहिए, एंड इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी चाहिए तो एटलीस्ट उसके सोर्स रखने चाहिए कि भाई कभी भी कोई किसी क्वेश्चन के बारे में जो है पूछे तो हमें उसका आंसर पहले ही पता हो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, आज का दिन जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक तो वीकेंड है एंड ऊपर बहुत सारी जो है मैं टेक वाली गॉसिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड बाकी इंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए आपकी कशिश के साथ। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ऑरिडू।
3: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मजरती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
5: ऑलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ऑलिव, हम नंबर 1।
7: TEC

देखिए जी, नए आईफोन के आने के बाद से लोगों का पुराना फोन जो है वो काम जो है कम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। सब लोग जो है बस यही कह रहे हैं कि यार हमें ना ऐसा लगता है कि हमारा फोन ना अब स्लो हो गया है। वैसे तो नया अपडेट आ चुका है, लेकिन उस अपडेट को करने के बाद जितने पुराने आईफोन थे, यानी आईफोन 13 अगर आप यूज कर रहे हैं या 15 यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहे हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो मैं आईफोन 13 यूज करती हूँ, अभी तक का मतलब मैंने अपने दोस्तों के फोन भी यूज किए हुए हैं ना, सो अभी तक का सबसे बेस्ट अगर कोई आईफोन है तो आईफोन 13 है। 18 अभी तक हाथ में नहीं आया मेरे, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग मुझे गिफ्ट करना चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी नए लॉन्च के बाद सामने आई हैं कि सैमसंग जो है वो हर तरीके से जो है वो टारगेट कर रहा है एप्पल को, एंड एप्पल जो है उसका जवाब नहीं दे रहा है। इस वजह से जो है काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये एप्पल जवाब क्यों नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या आपको कोई अगर ऐसे बार बार टारगेट करके पोस्ट डाले तो क्या आप खुद को रोक पाते हैं? मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो फिंदा।

देखिए जी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे AI बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, फीचर्स लेकर आ रही हैं। अब देखिए, चाहे आपको अपने पार्टनर में कितनी भी फीचर चाहिए वो आपको मिले या ना मिले, आपको अपने AI में सारे फीचर्स मिलेंगे। आपको अपने पार्टनर से जो है ये शिकायत है कि वो आपको सुनता नहीं है, AI सुनेगा। रियल टाइम कॉन्वर्सेशन नहीं करता आपका पार्टनर, AI सुनेगा। सब कुछ कर सकता है AI, देखो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए आई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, अगर हम बात करें ना टेक्नोलॉजी की, सो जेमिनाई जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन AI जो है वो बन के उभर रहा है। सो इसीलिए जेमिनाई ने जो है अपना नया वेरियंट यानी 3.8 जो है जारी कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद अब आपकी रियल टाइम कॉन्वर्जेशन जो है वो और ज़्यादा हाईटेक हो जाएंगे एंड और आपको अच्छे आंसर जो है वो मिलेंगे। सो देखिए, आपस में कंपटीशन जारी है, चैट GPT, क्लॉड, जेमिनाई क्या ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा यह हमें पता चलेगा। वैसे आप कौन सा AI टूल है जो यूज़ करते हैं, 3311063 पर आके मुझे जल्दी से बता दीजिए। मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye gana.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
2: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prizes on selected items at Lulu.
1: 4 days, mega deals, more savings.
2: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
1: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
3: Speech dena aur baat kehna, dono alag cheeze hain. Speech खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
4: T-E-C-A

जैसे जैसे स्कैमर्स जो हैं वो हाईटेक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी स्कैमर्स को रोकने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाती जा रही है. That's the best part, I feel. Welcome to 106.3 Radio Olive पर. मैं हूँ आपकी कशिश and show आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ The Tech Show, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ होती है. अब देखिए यार, अगर मैं बात करूँ ना स्कैमर्स को रोकने की, तो उसके लिए जो है एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है गूगल पिक्सल के द्वारा, जहाँ पर एक कीबोर्ड स्कैम डिटेक्शन जो है वो आया है, जहाँ पिक्सल डिवाइसेस के लिए एक लेटेस्ट ड्रॉप में नए फीचर आए हैं जो कीबोर्ड लेवल पर ही स्कैम मैसेजेस को जो है वो लिंक्स को ट्रेस कर लेते हैं एंड स्कैमर्स को वहीं रोक देते हैं. मतलब अगर आप जो है किसी भी यू नो स्कैमर वाले मैसेज पर पहुंचे हो एंड वहां पर आप क्लिक करने वाले हो, तो वो आपको डिटेक्ट करके पहले ही बता देगा. देख लीजिए कितने ज़्यादा स्मार्ट हो गए. लेकिन आप स्कैमर्स को मौका देना कब जो है वो बंद करेंगे? तो देखिए टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और स्टे ट्यून रहिए. कैसे रहिए? जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए और डू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से.
2: अपना ऑफर चेक कीजिए और डू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें.
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

देखिए जी, पिछला पूरा हफ्ता जो है हमने बात करी थी एप्पल की, लेकिन इस बार का एपिसोड जो है मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पिक्सल के नाम होता जा रहा है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कशिश, और आपके लिए तो टेक शो लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, अगर हम पिक्सल की बात करें ना, तो वो कुछ नया लेकर आ रही है जो बाकी और कोई कंपनी जो है ट्राई नहीं कर रही है। अब देखिए यार, गूगल जो है वो सेप्टेम्बर की अपने ड्रॉप में एक नई चीज़ ड्रॉप करने वाला है, दैट इज पॉज पॉइंट। तो अक्सर क्या होता है ना कि आप कोई काम करते करते इंस्टाग्राम खोल लेते हो या डिस्ट्रैक्टिंग ऐप बेसिकली खोल लेते हो। सो इससे बचाने के लिए आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली लैग करने लगेगा, धीरे चलने लगेगा जब भी आपको ऐसा ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ऐप जब आप खोलेंगे तब। सो इससे क्या होगा कि आपका फोकस बढ़ेगा एंड आप फालतू में अपना जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे फ़ोन पे। वाओ यार, मतलब मम्मी जो थी वो कम थी हमें फ़ोन से दूर रखने के लिए, कि अब ये भी आ गया है। वैसे देखिए और बहुत सारी बातचीत अभी करनी बाकी है, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने?
1: जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
2: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
3: Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
4: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
3: 4 days, mega deals, more savings.
4: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
3: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
5: Mere sapnon ki rani kab aayegi?
6: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज़ फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
7: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
6: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें, धरोहर मिस मत करना।
8: नमस्कार, माय नेम इज Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
9: J-E-C-A.

कितने सारे गेम हैं ऐसे जिनका इंतजार करते हुए हम 12 साल से 20 साल के हो गए एंड फिर भी वो गेम अभी तक नहीं आ पाए। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसर शैन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। अब देखिए यार, अगर मैं बात करूँ ना गेमिंग की, तो गेमिंग में हर रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हो रहा है। एंड अब आ चुका है 3D वर्ल्ड जनरेशन AI, जहाँ पर जो है नए AI मॉडल अब सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि रियल टाइम 3D जो है वर्ल्ड जनरेट कर रहे हैं, जो ग्रेविटी एंड रियल वर्ल्ड फिजिक्स के लॉ को ओबे करता है। हाँ जी, जो ग्रेविटी के हिसाब से चलता है। अब ये टेक जो है, ये गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स ट्रेनिंग के लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर रहा है, ताकि रियल लाइफ से जो है इंस्पायर हो सके। देखिए जी, कितना खतरनाक होती जा रही है धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी। मैं हूँ आपकी कसर, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो विद मसराती.
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: Lulu Mega Deals are back, and this time it's all about bigger deals, better prices, and smarter shopping.
3: From 16 to 19 September, grab special offers and brand new prices on selected items at Lulu.
2: 4 days, mega deals, more savings.
3: So get your shopping list ready, because this time at Lulu, your shopping is going mega while your spending goes down.
2: Lulu Mega Deals 2026. Spend less, save more.
4: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं. स्पीच खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं, सुनी जानी चाहिए. The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर. ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार. ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026. द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect, and conquer.
5: TECNO.

तो देखो यार, चीज अच्छी हो या बुरी हो, उसके खत्म होने का वक्त जो है वो आ ही जाता है, और बस हमारे शो के भी खत्म होने का वक्त आ गया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर मस्ती और मजे के तड़के के साथ हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। कल मुलाकात होगी हमारी लाइफ मस्ते वाले शो में, जहाँ पर आपको एंटरटेन करूंगी और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाऊंगी। तो सुबह 10 बजे बिल्कुल तैयार हो जाना, फिलहाल अपना वीकेंड जो है वो इंजॉय करो, और कहते रहो हैप्पी वीकेंड जियो पिंदास तारा, बाय बाय, टेक केयर।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
3: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू, शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स. यार फ्राइडे आते ही ना मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का सा फील करता है. सेम ट्रैफिक होता है, सेम फोन होता है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन अंदर से ना एक फीलिंग होती है कि बस अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम. सो आई वॉज वॉचिंग चुंबक, नेटफ्लिक्स पर आया है, जिसमें हर कोई कह रहा है कि यार पुरानी वो 90s वाले डायलॉग्स है, कॉमेडी ऑफकोर्स है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उसमें एक डायलॉग है जो नीना गुप्ता जो है वो हर बार बोलती है कि थोड़ा तो अपने लिए जीऊंगी कि नहीं. सो बस वो फ्राइडे सैटरडे को ना यही फीलिंग आती है कि बस थोड़ा तो अपने लिए जीऊंगी कि नहीं. और शायद वीकेंड की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये हमें ना कुछ अचीव करने के लिए नहीं मिलता, ना कोई टारगेट्स, ना कोई डेडलाइंस, ना कोई प्रेजेंटेशन, बस थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस. और हम पूरी वीक जो है वो लाइफ को मैनेज करते हैं, और वीकेंड हमें याद दिलाता है कि लाइफ को फील भी करना है. सो अगर आज रात को आपके पास कोई ग्रैंड प्लान नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. कोई अच्छी सी चाय, कोई फेवरेट म्यूजिक, एक लॉन्ग ड्राइव, कोई अपने से किसी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन को करना, या फिर खिड़की के पास बैठकर कुछ नहीं करना. वीकेंड का बेस्ट प्लान ना कभी कभी नो प्लान भी होता है. सो आपका फ्राइडे नाइट रिचुअल क्या होता है, व्हाट्सएप करके बताइए 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है हैप्पी वीकेंड्स. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका Mitra are performing live with Grand Orchestra.
1: September 24th at Holiday Inn Doha. Retro vibes, pure nostalgia and 1,000 memories.
2: Log on to Q-Tickets or www.a2zetc.com or apni tickets aaj hi book kare. Dharohar miss mat karna.

हमने ना बचपन से एक बात ऑलमोस्ट रट ली है कि पोटेशियम चाहिए मतलब बनाना खाओ, और बनाना डेफिनेटली पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन पिक्चर थोड़ी सी और डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग भी। एक मीडियम बनाना ना रफली 422 mg पोटेशियम के साथ आता है, और मीडियम पोटैटो यानी कि एक आलू में अराउंड 620 mg पोटेशियम हो सकता है। You are listening Radio All at 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Yes, Happy Vegans. मतलब आलू जो है वो चुपके से बनाना को कंपटीशन दे रहा था और हमें पता ही नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि न्यूट्रिशन में सिर्फ एक न्यूट्रिएंट को देख करना किसी फूड को हेल्दी या अनहेल्दी बोल देना थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। फूड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैटर करता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रिपरेशन सब कुछ, ओवरऑल डाइट जो है वो सब कुछ मैटर करता है। तो आलू को सिर्फ कार्ब्स कहकर इग्नोर कर देना भी अनफेयर है, और बनाना को सिर्फ पोटेशियम के लिए याद करना ये भी अनफेयर है। सो कभी कभी न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा लेसन या ये होता है ना कि जो चीज हम ऑब्वियस समझते हैं रियलिटी उससे थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आपकी टीम कौन सी है, बनाना या फिर पोटैटो वाली? वैसे मेरे घर में हमेशा क्या होता था ना, जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर में क्या बनेगा तब आलू बन जाता था, इसीलिए आलू वैसे ही मेरा फेवरेट है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

आपको पता है हम हेडेक को सीरियसली लेते हैं, ऑफ कोर्स सर दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए, ये वो, फीवर को सीरियसली लेते हैं, लेकिन स्लीप प्रॉब्लम उसे तो हम इतने हल्के में लेते हैं, अरे यार नींद ही तो है, आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो भी कुछ कोई बात नहीं है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। लेकिन स्लीप ना एक्चुअली बॉडी का बैकग्राउंड मेंटेनेंस सिस्टम है और कतर में हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने अडल्ट के स्लीप डिसऑर्डर के डेडिकेटेड ट्रीटमेंट के लिए स्लीप हेल्थ क्लिनिक लॉन्च की है। इसका मतलब ये भी है कि स्लीप को अब सिर्फ लाइफस्टाइल कंप्लेन नहीं बल्कि प्रॉपर हेल्थ कंसर्न की तरह देखा जा रहा है। और ऑनेस्टली हमारी जनरेशन को इस कॉन्वर्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम में से कितने लोग हैं जो फिजिकली बेड पर होते हैं लेकिन मेंटली अभी भी ईमेल्स, डूम स्क्रोलिंग, डेडलाइन, टुमोरोज टू डू लिस्ट में घूम रहे होते हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास सोने के लिए टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा दिमाग स्विच ऑफ होने का नाम ही नहीं लेता। सो आज रात एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि फोन जो है उसको थोड़ा सा दूर रखिए, सोने से पहले थोड़ी सी शांति या फिर कोई किताब पढ़िए, देखते हैं कि दिमाग क्या करता है। फिर आपका स्लीप का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? मेरा तो स्लीप का सबसे बड़ा एनिमी है फोन। ओवरथिंकिंग भी होता है कुछ लोगों का और कुछ लोगों का लेट नाइट चाय यानी कि कड़क। यू टेल मी क्या है आपकी यू नो स्लीप साइकिल का एनिमी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

Solid 106.3 FM Gio Bendaz. गानों के साथ यह हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: कॉलिंग ऑल विजनरी ब्रांड्स एंड बिजनेस ओनर्स, इफ यू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, देन योर बिगेस्ट स्टेज इज रेडी।
3: अल शर्क मीडिया मैनेजमेंट प्राउडली प्रेजेंट्स द ग्रैंड थर्ड एडिशन ऑफ किड्स एक्सपो कतर 2026
2: एट QNCC हॉल नंबर 5।
3: दिस इज योर अल्टीमेट चांस टू पुट योर ब्रांड इन द स्पॉटलाइट एंड कनेक्ट डायरेक्टली with thousands of families.
2: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.

सूटकेस पैक करते वक्त ना हम क्या चेक करते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारी नॉर्मल सी चीजें, पासपोर्ट हो गया, टिकट हो गया, चार्जर हो गया, परफ्यूम, शूज, अपनी मेन चीजें। लेकिन अगर आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के साथ ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली कंट्रोल्ड मेडिसिन, तो स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने पिछले महीने 2026 में एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसके थ्रू पैसेंजर्स जो है वो कतर एंटर या लीव करते टाइम पर पर्सनल यूज कंट्रोल्ड मेडिसिन के परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल रिमाइंडर है। मैंने पिछले महीने भी इस बारे में बात किया था जब ये आया था। मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड होना और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। सो नेक्स्ट टाइम सूटकेस बनाते वक्त एक मिनी चेकलिस्ट और ऐड कर लीजिएगा। प्रिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन ओरिजिनल पैकेजिंग में हो, और इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड मुझे लगता है कि चीजें हैं वो सब आपके पास होनी चाहिए। सो ट्रैवल में ना सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम वो नहीं होती जो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद होती है। सो आई विल से कि पैकिंग के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप भूल जाते हो, इसलिए पहले चेकलिस्ट बना लो। सो पैकिंग स्मार्ट है, बट डॉक्यूमेंटेशन और भी ज्यादा स्मार्टर होना चाहिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

कभी कभी किसी कंट्री की ग्रोथ को समझने के लिए जीडीपी फिगर्स या ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है पीपल बिहाइंड द इंडस्ट्री, उसको देखना। फोर्ब्स मिडिल ईस्ट की 2020 लिस्ट जो है उसमें टॉप 100 ट्रैवल एंड टूरिज्म लीडर्स में कतर बेस्ड लीडर्स भी फीचर्ड हैं, और कतर एयरवेज के लोगों को भी लिस्ट में सेकेंड पोजिशन पर प्लेस किया गया है। एंड आई वॉज लाइक, इस स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो सिर्फ रैंकिंग नहीं है। ट्रैवल इंडस्ट्री ना आज सिर्फ लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जा रहे वाली इंडस्ट्री तो बची नहीं है। एयरलाइंस, एयरपोर्ट, होटल्स, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट्स, सब एक इकोसिस्टम बन चुका है। और कतर जैसे कंट्री में जहां पर एविएशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी का रोल ना बहुत ज्यादा विजिबल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग होता जाता है। अब आप सोचिए, एक पैसेंजर के लिए फ्लाइट सिर्फ ए से बी जाना तो है नहीं, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, लेकिन इंडस्ट्री के लिए उस एक जर्नी के पीछे थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस, मतलब पीपल और सिस्टम काम कर रहा है। यार, आपके लिए ट्रैवल का बेस्ट पार्ट क्या है? एयरपोर्ट, फ्लाइट्स, होटल या फिर डेस्टिनेशन? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, हैप्पी वीकेंड्स। सो मैं ये सोच रही थी कि यार, ये इस लिस्ट में आना कोई छोटी बात तो है नहीं। फोर्ब्स की जब लिस्ट आती है तब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ओनली दैट। ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले जब लीडर्स की लिस्ट आई और उसमें कतर के लोगों का नाम देखा गया, तो आई वॉज लाइक कि कितना बढ़िया काम हो रहा है, और अपनी कंट्री के लिए बेस्ट काम करना, ये तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता ना। सो यू टेल मी,

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

फॉर्मूला वन का मैजिक ना सिर्फ रेस के 90 मिनट्स में नहीं होता, एक्चुअली रेस से पहले का एंटिसिपेशन भी एक अलग एक्सपीरियंस है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम हैप्पी वीकेंड्स। एक्चुअली कतर का 2027 जो फॉर्मूला वन है वहां पर दिसंबर 3 से लेकर 5 तक लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में स्केड्यूल है और ये 24 रेस कैलेंडर का 23rd राउंड होने वाला है। और फॉर्मूला वन इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि यहां स्पीड के साथ स्ट्रेटजी भी रेस करती है। ड्राइवर फास्ट है बट टायर्स कब चेंज होंगे, वेदर क्या करेगा, ठीक है, जो पोस्ट आते हैं मतलब पिट स्टॉप्स जो आते हैं कितने एफिशिएंट होंगे, टीम का डिसीजन कब लेना है। कभी कभी रेस ट्रैक पर फास्टेस्ट कार नहीं बल्कि बेस्ट डिसीजन गेम जो है वो चेंज कर देता है। और ऑनेस्टली लाइफ भी थोड़ी सी फॉर्मूला वन जैसी है, हर वक्त एक्सीलेटर दबाकर चलाना जरूरी नहीं है, कभी ब्रेक चाहिए, कभी पिट स्टॉप चाहिए, कभी स्ट्रेटजी चाहिए और फिर फुल स्पीड। अगर फॉर्मूला वन ड्राइवर आप होते तो आपकी ड्राइविंग स्टाइल क्या होता, फुल स्पीड या फिर कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

और भुवन अरोरा की ये सीरीज जो है रेलवे टिकटिंग सिस्टम और तत्काल जो है उसके अराउंड घूमती है, रिवॉल्व करती है जो तत्काल टिकटिंग होती है। ये ना दो दिन पहले सीरीज आई है और स्ट्रीमिंग इसकी हो गई है और अर्ली रिव्यू ने ऑलरेडी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई हैं, रील्स स्पेशली। ऑल दो एग्जीक्यूशन को मिक्सड रिस्पॉन्स मिला है, पर आप जब इंस्टाग्राम पर देखोगे मूवी जिसका नाम है वेटिंग है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। और इस स्कैम की स्टोरी जो है वो किसी ग्लैमरस वर्ल्ड में नहीं है, एक आम आदमी की बेसिक प्रॉब्लम टिकट चाहिए से स्टार्ट होती है। और शायद इसी वजह से कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि जॉब किसी जगह पर जब आप करने जाते हो और जब किसी सिस्टम में डिमांड बहुत ज़्यादा हो और अपॉर्चुनिटी बहुत कम, तो कॉम्पिटिशन के साथ ना शॉर्टकट्स भी एंटर कर जाते हैं। सो आपने लाइफ में सबसे स्ट्रेसफुल वेटिंग किस चीज़ के लिए की है? टिकट्स, वीज़ा, सैलरी या फिर किसी का रिप्लाई? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
3: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कम्पीट कर सकते हो बिना फ्रेंडशिप को कॉम्पिटिशन बनाए? नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसी इंटरेस्टिंग थ्योरी पर बनी है। स्टोरी जो है वो दो चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, माया और अंजलि, उन दोनों की है। अब कॉम्पिटेटिव बॉलीवुड फ्यूजन डांस टीम ज्वाइन करती हैं वो दोनों। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फ्रेंडशिप और एम्बिशन एक ही स्टेज पर आ जाते हैं। फिल्म जो है वो ऑलरेडी आज ही रिलीज हुई है एंड आई वॉज लाइक कि यार और ये सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन की स्टोरी नहीं है। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा फ्रेंड होता है जो हमारे साथ ग्रो करता है, फिर एक दिन उसकी प्रमोशन हो जाती है, उसका बिजनेस चल पड़ता है या फिर उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो हम चाहते थे, और तब असली टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। क्या मैं उसकी सक्सेस से जेन्युइनली सेलिब्रेट करूं या फिर जलूं? कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है भाई, लेकिन कंपैरिजन दोस्ती को धीरे से चेंज कर सकता है। और आपकी लाइफ में वो फ्रेंड्स जो हैं वो कौन है जिसके साथ आप कंपीट कर भी सकते हैं और सेलिब्रेट भी? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स।

फैसिनेटिंग थॉट है, अगर दुनिया में कहीं आपको एक ऑल्टरनेट वर्जन आपका एग्जिस्ट करता है तो क्या वो आपसे ज़्यादा खुश होता या उसकी लाइफ भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जितनी आपकी है। एमिली सेंट की एक किताब है जिसका नाम है एग्जिट पार्टी, जो सितंबर 15 को रिलीज़ हुई है, ठीक है। क्राइम और साइंस फिक्शन को पैरेलल वर्ल्ड के आइडिया के साथ कंबाइन करती है। स्टोरी जो है वो आइडेंटिटी चॉइसेस और ऑल्टरनेट रियलिटीज़ के अराउंड मूव करती है। वैसे ऑल्टरनेट जो रियलिटीज़ हैं उसको लेकर मैंने पहले भी एक किताब पढ़ी है, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जिट पार्टी। और मुझे बुक का ये आइडिया इतना फैसिनेटिंग लगता है। हम अक्सर सोचते हैं काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैं दूसरी सिटी चली गई होती, काश मैंने ये कंट्री ना चूज की होती, काश मैं वो जॉब चूज कर लेती। बट इमेजिन कीजिए अगर आपको सच में वो ऑल्टरनेट लाइफ देखने को मिल जाए, मे बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये नहीं होगा कि मेरी दूसरी लाइफ बेटर होती, क्वेश्चन ये होगा कि क्या मैं अपनी करंट लाइफ को भी उतनी क्यूरियोसिटी के साथ देख पा रही होती। अगर आपको अपनी लाइफ सिर्फ 10 मिनट के लिए एक ऐसी विंडो मिले ऑल्टरनेट लाइफ को देखने के लिए, तो आप क्या देखना चाहोगे? कोई चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये चूज किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, बता सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप पर, नंबर सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

हमारी दुनिया इंटरेस्टिंगली इंक्रीज हो रही है, डिजिटल हो रही है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, डिजिटल इनविटेशंस हैं, डिजिटल मेमोरीज हैं, एआई जनरेटेड फोटोज हैं, और फैशन में एक इंटरेस्टिंग काउंटर ट्रेंड दिख रहा है, एनालॉग ड्रेसिंग, मतलब इंटेंशनली ऐसे क्लोथ्स और स्टाइलिंग चूज करना जो थोड़ा लेस एल्गोरिदम्स, लेस परफेक्ट इंस्टाग्राम लुक और मोर पर्सनल फील करे। ओल्ड स्कूल सिलवेट्स देख लो, नेचुरल टेक्सचर देख लो, क्लासिक वॉचेस, स्ट्रक्चर्ड बैग्स, थोड़ा विंटेज ज्वेलरी, ऐसे पीसेस जो ट्रेंड खत्म होने के बाद भी वार्डरोब में सर्वाइव करते हैं। और इसका रीजन सिर्फ फैशन नहीं है, आज जब एल्गोरिदम हमें ऑलमोस्ट हर चीज सजेस्ट कर रहा है, क्या देखें, क्या खरीदें, क्या पहने, फैशन में पर्सनल चॉइस का फील ना और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मे बी स्टाइल का नेक्स्ट बिग स्टेटमेंट ये नहीं है कि मैं क्या ट्रेंड फॉलो करूं या क्या ट्रेंड मैंने फॉलो किया, बल्कि मैं क्या चूज किया और क्या ये मेरा था, ये मेरा ट्रेंड है, ये मेरा फील है, ये आपको देखना चाहिए। सो आपका वार्डरोब मोर ट्रेंड ड्रिवन है या फिर पर्सनैलिटी ड्रिवन? मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उन्हें ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इन माई ऑफिस, इफ दे लाइक ब्लैक कलर, दे लाइक ब्लैक कलर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फॉल सीजन, इस ऑटम सीजन कौन से कलर्स आ रहे हैं। बाय द वे, ये भी अपनी पर्सनालिटी का एक बहुत बेस्ट पार्ट है कि आप कॉन्फिडेंट हो अपने कलर्स को लेके। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: भाई बचपन में पापा का मतलब होता है रूल्स, परमिशन, कितने बजे घर आओगे, फोन साइड में रख दो और कभी कभी तो लेक्चर। और हम बड़े होते हैं और सडनली रियलाइज होता है कि पापा भी एक इंसान है, उनकी भी इनसिक्योरिटीज होंगी, उनकी भी ड्रीम्स होंगी, उन्हें भी मिस्टेक्स करनी होंगी और की होंगी। भाई जाकिर खान का नया नेटफ्लिक्स पर स्टैंड अप स्पेशल है पापा यार, जो आज ही रिलीज हो रहा है और ऑफिशियली डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनके जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो फादर के साथ इवॉल्विंग रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड हैं। जब आप अपने फादर के साथ कुछ ऐसे चीज़ों को याद करोगे तब आपको समझ आएगा। और मुझे लगता है कि वीकेंड के लिए इससे बेटर थॉट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अडल्टहुड का ना एक ब्यूटीफुल पार्ट ये भी है कि हम पेरेंट्स को उनका जो रोल है उसमें देखते हैं, हम उन्हें एक इंडिविजुअल के रूप में समझने की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपसे दूर हैं तो आज एक सिंपल कॉल कीजिए यार, थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ़ोन पर ही सही, बस पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। कभी कभी कॉन्वर्सेशन का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन कॉल। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड और ये है हैप्पी वीकेंड्स।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: इट्स काल का हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मसराती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मसराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
3: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी,
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मसराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
0: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.

0: छोटी सी फ्राइडे नाइट कन्फेशन करती हूँ, हम वीकेंड को भी अननेसेसरी प्रोडक्टिव बना देते हैं. यू नो, सैटरडे को ये करना है, संडे को वो करना है, वर्कआउट, क्लीनिंग, शॉपिंग, ईमेल्स, कंटेंट, फैमिली प्लान्स, और मंडे आते आते हम बोलते हैं कि यार मतलब फ्राइडे सैटरडे तो निकल ही गया और संडे को हमारा वर्किंग डे भी स्टार्ट हो गया, और मंडे आते आते ऐसा लगता है कि मतलब कब निकला था वीकेंड, पता ही नहीं चला अगला कब आएगा. शायद क्योंकि हमने वीकेंड को भी एक प्रोजेक्ट बना दिया. हर फ्री मोमेंट को फिल करना जरूरी नहीं है. कभी कभी दो घंटे बिना किसी पर्पस के बैठिए, रेस्ट कीजिए, बढ़िया सी मूवी देखिए. और इस हफ्ते तो नेटफ्लिक्स पे भरमार है, इतनी सारी नई चीजें आई हैं. इवन अमेजोन प्राइम पे मैंने आपको बताया वेटिंग है, यू कैन वॉच. बिना उसका रिव्यू बनाए म्यूजिक सुनिए, बिना स्टोरी लगाए किसी दोस्त के साथ चाय पीजिए, बिना फोटो क्लिक किए. कभी कभी ना फोन को साइड में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रियलाइज करना कि लाइफ चल रही है इवन वेन यू आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग इट. सो कुछ ऐसा कीजिए जो किसी को दिखाना जरूरी नहीं है, ना कोई पोस्ट, ना कोई स्टोरी, ना कोई प्रूफ. बस एंजॉय कीजिए अपने फ्राइडे को. और यू टेल मी कि आपके कल के यानी कि सैटरडे के क्या प्लान है. बाय द वे, मैं मिलूंगी कल शाम को आपको मिडनाइट लाउंज लेकर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Yeah.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।